0: कार्पेट म्यूजिक सिस्टम बत्ती लगायत का सामान भाड़ा में पाइन का साथ ही हाफ तथा फुल कैटरिंग कर
1: ग्राहक को संतुष्टि नै हाम्रो सफलता। सम्पर्क का लागि कुमार श्रेष्ठ 98512482383 98412482383 र कृष्ण श्रेष्ठ 98640020241।
2: वैद्यश्वर रेन्टल एन्ड क्याटरिङ सर्भिस चरीकोट दोलखा।

सारी रात रोते रहते हैं रुलाते रहते हैं, और सारी रात रोते रहते हैं रुलाते रहते हैं, धक्के लिखे हैं कर्मों में सो खाते रहते हैं, ना कोई हंसाने वाला ना नचाने वाला हमको, तो खुद का हाथ पकड़ के खुद को नचाते रहते हैं हम इतने पास।

0: पाटनदेखि काठमाडौँ छैन धेरै टाढा, एउटी भएको नकलीसित माया प्रति गाडा, त्यही नकललाई भेट्न जाँदा भाइ छैरहेछ साडा।
1: लौन अब के गरम के गरम, लौन अब के गरम के गरम,
2: नागलीलाई पातलीलाई, नागलीलाई पातलीलाई कसरी के गरम।

कालिंचोक भगवती मंदिर में जनै पूर्णिमा विशेष यात्रा तथा झांकी बोन सम्मान कार्यक्रम संबंधी सूचना। परापूर्व कालदेखि नै जनै पूर्णिमाको अवसरमा कालिंचोक भगवती मंदिर में झांकी तथा बोन धर्मावलम्बीहरूले विशेष